अमृत नामृत माय समाय प्रभ जी बसे साध की रसना नानक जन का दर्शन दसना प्रभ को सिमरै से धनवंते प्रभ को सिमरै से पतवंते प्रभ को सिमरै से जन प्रवान प्रभ को सिमरै से पुर प्रधान प्रभ को सिमरै से बेमोताजे प्रभ को सिमरै से सर्व के राजे प्रभ को सिमरै से सुखवासी।

अष्टपदी। जे प्रसाद सती अमृत खाए ते ठाकर रख मन माए, जे प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको स्मृत परम गद पावे, जे प्रसाद बसे सो मंदिर तिसे त्यार सदा मन अंदर, जे प्रसाद रे संसो बसना आठ

ना थोरी तेरो नहीं सोजानी मोरी रहाओ। आपन राम ना चीनो खिनुआ जो पराई सो अपनी मनुआ। नाम संगी सो मन ना बसायो छोड़ जाए वाहू चित लायो। सो संचियो जित भूख तसायो अमृत नाम तो सा नहीं पायो। काम क्रोध मोह कूप परिया गुर प्रसाद नानको तरिया। टोडी महला पंजवा हमारा एक है हरी हरी आन अवर सियाण ना करी रहा। वड़े भाग गुर अपना पायो गुरमुखो हर नाम दृढ़ायो। हर हर जाप ताप व्रत नेमा हर हर त्याय कुशल सब खेमा। आचार व्यवहार जात हर गुनिया महा आनंद कीर्तन हर सुनिया। कहो नानक जिन ठाकर पाया सब किश तिसके गृह मैं आया। टोडी महला पंजवा कर चौथा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। रूड़ो मन हर रंगो लोड़ै गाली हर नी हो ना होए रहाओ। हाँ टूडेंदी दर्शन कारण बीथी बीथी पेखा गुरमिल परम गवाया है। एह बुद्ध पाई मैं साधु करना लेख लिखियो तुर माथ एह बिद नानक हर नैन अलोए। टोडी महला पंजवा गर्ब गहलड़ो मूड़ो हियो रे हियो महराज री मायो। डीहर न्याई मोयफा क्यो रे रहाओ। कणो कणो कणो सद लोड़ै बिन लहना कैठ पायो रे। महराज रो गाथ बाहू स्यो लुबड़ियो ने पागड़ो पाहे संजोयो रे। सुन मन सीख साधु जन सगलो थारे सगले प्राश्त मिट्यो रे। जा को लहनो महराज री गठड़ियो जन नानक गर्भासना पौड़ियो रे। टोडी महला पंजवा कर पंजवा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन पंच दुख अर अहंग रोग एह तंते सगल दूर कीन रहाओ। बंधन तोर शोर बिख्याते गुर को शब्द मेरा हीर दीन। रूप अनुरूप मेरो कश ना बिचार्यो प्रेम गयो मोय हर रंग पीन। पेख्यो लालन पाठ बीच खोए आनंद चिता हर खे पतीन। तिस ही को गृह सोई प्रभ नानक सो ठाकुर तिस ही को तीन। टोडी महला पंजवा माई मेरे मन की प्रीत एही कर्म धर्म जप एही राम नाम निर्मल है रीत रहाओ। प्राण आधार जीवन तन मोरै देखन कौ दर्शन प्रभ नीत। बाट घाट तोसा संग मोरै मन अपने कौ मैं हर सखा कीत। संत प्रसाद भय मन निर्मल कर कृपा अपने कर लीत। सिमर सिमर नानक सुख पाया आद जुगाद भगतन के मीत। टोडी महला पंजवा प्रभ जी मिल मेरे प्राण बिसर नहीं निमख ही अरे ते अपने भगत को पूर्ण दान रहाओ। खोवो परम राख मेरे प्रीतम अंतर जामी सुड़ सुजान। कोट राज नाम तन मेरा अमृत दृष्ट धारो प्रमान। आठ पहर रसना गुण गावे जस पूरा गावे समर्थ कान। तेरी शरण जियन के दाते सदा सदा नानक कुर्बान। टोडी महला पंजवा प्रभ तेरे पग की तूर दीन दयाल प्रीतम मन मोहन कर कृपा मेरी लोचा पूर रहाओ। दै दसरव रहया जस तुमरा अंतर जामी सदा हजूर। जो तुमरा जस गावै करते सेजन कबो न मरते चूर।
तंद बंद बिनसे माया के साधु संगत मिटे बिसूर सुख संपत भोग इस जी के बिन हर नानक जाने कूर टोडी महला सदा नानक कुर्बान टोडी महला पंजवा प्रभ तेरे पग की।

दूध कर्म फुन सुरत समायण होए निराश जमावो जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा रहाओ। एहो मनी टी हाथ करो फुन नेत्रो नींद ना आवे रसना नाम जपो तब मथिया इन बदे अमृत पावो। मन संपटो जित सत सरनावन पावन पाती तृप्त करे पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन बिद साहेब रवत रह। कहिंदे कहे कहे कह जावे तुम सर अवर ना कोई भगत हीन नानक जन जंप हौसा लाही सच्चा सोई। सूही महला पहला कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद अंतर वसै ना बाहर जाए अमृत छोट काहे बिख खाए ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे होवो चक्र साचे केरे रहाओ। ज्ञान ध्यान सब कोई रवे बंधन बांधया सब जग पवे सेवा करे सो चाकर होए जल थल महियल रव रहया सोए। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए प्रणवत नानक तारे सोए। सूही महला पहला कर सेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद उज्जल कहा चिलकना कोटम कर लड़ी मस तोतिया झूठ ना उतरै जैसो तोवा तिस। सज्जन सेई नाल मैं चल दिया नाल चलान जिथे लेखा मंगिया तिथे खड़े दिसन रहाओ। कोठे मंडप माड़िया पासो चितवियां हां टठियां कम ना आवनी विचों सखणियां हां। बग्गा बग्गे कपड़े तीर्थ मंज वसन कुटकुट जिया खावणे बग्गे ना कई अन्न। सिमर रुख शरीर मैं जन देख भुलन से फल कम ना आवनी ते गुण मैं तन हन। अंदले पार उठाया डूगर वाट बहुत अखी लोड़ी ना लहां हों चढ़ लंगा कित। चाकरियां चंगे आईया अवर स्याण पकित नानक नाम संभाल तू बद्दा छुट्टै जित। सूही महला पहला जप तप का बंद बेड़ला जित लंगै वहेला ना सरवर ना उछलै ऐसा पंथ सुहेला। तेरा एको नाम जीठड़ा रत्ता मेरा चोला सद रंग ढोला रहाओ। साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई जे गुण हो वै गंठड़ी है मेलेगा सोई। मिलिया होए ना विछड़ै जे मिलिया होई आवा गौण निवारिया है साचा सोई। हम मैं मार निवारिया सीता है चोला गुरबचनी फल पाया सह के अमृत बोला। नानक कह सहेलियो सौ खरा प्यारा हम सह केरिया दासियां साचा खसम हमारा। सूही महला पहला जिन कौ पांडै पाओ तिना सवार सी सुखी करै पसाओ दुख विसार सी। सहसा मूले नाहे सर पर तार सी इतना मिलिया गुरे आए जिन कौ लिखिया। अमृत हर का नाव देवे दिखिया चल ऐ सतगुर पाए पवे ना पीखिया। जा को महला हजूर दूजे नवै किस दर दरवाणी नाहे मूले पुछ तिस। छुट्टै ता कै बोल साहिब नदर जिस कल्ले आने आप जिस नाही दूजा मत कोए। ताहे ओ सारे साज जाने सब सोए नाओ नानक बख्शीस नदरी कर्म होए। सूही महला पहला पांडा हच्छा सोए ज्योतिष भाव सी पांडा आत्मलीन तोता हच्छा ना होए सी। गुरु द्वारे होए सोजी पाए सी ये द्वारे तोए हच्छा होए सी। मैले हच्छे का विचार आप वरताए सी मत को जाने जाए अगै पाए सी। जेहे कर्म कमाए तेहा होए सी अमृत हर का नाव आप वरताए सी।
ਚੱਲਿਆ ਪਤ ਸਿਉ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਵਾਜਾ ਵਾਏ ਸੀ ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਤਿਹ ਲੋਕ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਨਾਨਕ ਆਪ ਨਿਹਾਲ ਸਭ ਕੁਲਤਾਰ ਸੀ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੋਗੀ ਹੋਵੇ ਜੋਗ ਵੈ ਭੋਗੀ ਹੋਵੇ ਖਾਏ ਤਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਪ ਕਰੇ ਤੀਰਥ ਮਲ ਮਲ ਨਹਾਏ ਤੇਰਾ ਸੱਦਣਾ ਸੁਣੀ ਜੈ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋ ਬਹਿ ਅਲਾਏ ਰਹਾਓ ਜੈਸਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੈ ਜੋ ਖੱਟੇ ਸੋ ਖਾਏ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸਣਨੀ ਸਣੈ ਜਾਏ ਤੈ ਸੋ ਜੈਸਾ ਕਾਂਢੀਐ ਜੈਸੀ ਕਾਰ ਕਮਾਏ ਜੋ ਦਮ ਚੇਤਨਾ ਆਵਈ ਸੋ ਦਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਇਹੋ ਤਨ ਵੇਚੀ ਬੈ ਕਰੀ ਜੇ ਕੋ ਲੈ ਵਿਕਾਏ।

जोग ना खिंथा जोग ना डंडा जोग ना पसम चढ़ाई है जोग ना मुंदी मूंड मुंडाया जोग ना सिंघी वाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है गली जोग ना होई एक दृष्ट कर संसर जाने जोगी कहिए सोई रहाओ जोग ना बाहर मड़ी मसाणी जोग ना ताड़ी लाई है जोग ना देद संतर पवे जोग ना तीर्थ नाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है सतगुर भेट ता सहसा टूट तावत वर्ज रहाई है निजर चर सहे तुन लागे कर ही परचा पाई है अंजन माहे निरंजन रही है जो जुगत इव पाई है नानक जीवत्या मर रही है ऐसा जो कमाई है वाजे बाजो सिंगी वाजे तो निरपो पद पाई है अंजन माहे निरंजन रही है जो जुगत तो पाई है सूही महला पहला कौन तेरा जी कवन तुला तेरा कवन सराब बुलावा कौन गुरु कह पै दीख्या लेवा कह पै मुल करावा मेरे लाल जीओ तेरा अंत ना जाना तू जल थल मैयर भरपुर लीना तू आपे सर्ब समाणा रहाओ मन तारा जी चित तोला तेरी सेव सराब कमावा कट ही पीतर सो सह तोली इन विद चित रहावा आपे कंडा तोल तोरा जी आपे तोलन हारा आपे देख्या आपे बूझे आपे है मणजारा अंदला नीच जात परदेसी खिन आवे तिल जावे ता की संगत नानक रहिंदा क्यों कर मूड़ा पावे राग सूही महला चौथा कर पहला एको अंकार सतगुर प्रसाद मन राम नाम आराध्या गुर शब्द गुरु गुर के सब इच्छा मन तन पूरिया सब चूका डर जम के मेरे मन गुण गावो राम नाम हर के गुर तुठे मन पर बोधया हर पिया रस गट के रहाओ सतसंगति उत्तम सतगुर केरी गुण गावे हर प्रभ के हर कृपा धार मिलो सतसंगत हम धोवे पग जन के राम नाम सब है राम नामा रस गुरमत रस रस के हर अमृत हर जल पाया सब लाथी तिस तिस के हमरी जात पात गुर सतगुरु हम वेचो सिर गुर के जन नानक नाम परयो गुर चेला गुर राखो ला जन के सूही महला चौथा हर हर नाम भजो पुरखोत्तम सब बिन से दाल दलगा पौ जन मरना मेट्यो गुर सबदी हर अस्त्र सेव सुख समगा मेरे मन भज राम नाम अत पिरगा मैं मंतन अर्प धरियो गुरिया गै सिर वेच लियो मुल महंगा रहाओ नरपत राजे रंग रस मान बिन नावें पकड़ खड़े सब कलगा धर्म राय सिर डंड लगाना फिर पछताने हथ फलगा हर राख राख जन किरम तुम्हारे सरनागत पुरख प्रत पलगा दर्शन संत देहो सुख पावे प्रभ लोच पूर जन तुम गा तुम समरथ पुरख वड्डे प्रभ स्वामी मोको कीजे दान हर निमगा जन नानक नाम मिले सुख पावे हम नाम विटौ सद घुमगा सूही महला चौथा हर नामा हर रंग है हर रंग मजीठ रंग गुर तुठे हर रंग चाड़िया फिर बहु न हो भी भंग मेरे मानो हर राम नाम कर रंग गुर तुठे हर उपदेसिया हर पेटिया राओ निसंग रहाओ मुंद एणी मन मुखी फिर आवन जाना अंग हर प्रभ चेतना आयो मन दूजा पाओ सहलंग हम मैल भरे दुहचारिया हर राखो अंगी अंग गुर अमृत सर नव लाया सब लाथे किलवख पंग हर दीना दीन दयाल प्रभ सतसंगत मेलो संग मिल संगत हर रंग पाया जन नानक मन तन रंग
ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਹਰ ਕਰੈ ਨਿਤ ਕਪਟ ਕੁਮਾਵੈ, ਹਿਰਦਾ ਸੁਧ ਨਾ ਹੋਈ। ਅਨ ਦਿਨ ਕਰਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਤੇਰੇ, ਸੁਪਨੈ ਸੁਖ ਨਾ ਹੋਈ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਪੂਰੇ ਰੰਗ ਕਦੇ ਨਾ ਚੜੈ, ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਈ ਰਹਾਓ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਕਰੇ ਪੂਜਾ, ਮਨਮੁਖ ਰੋਗ ਨਾ ਜਾਈ। ਅੰਤਰ ਰੋਗ ਮਹਾਂ ਅਭਿਮਾਨਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਖੁਆਈ। ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਬਹੁਤ ਚਿਤਰਾਈ, ਮਨੁਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੈ। ਹਉ ਮੈਂ ਵਿਆਪਿਆ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਚੀਨੈ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਆਵੈ। ਨਾਨਕ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਸੋ ਬੂਜੈ।